0: तुम क्लास तुम क्वाफी
1: ते मानना नहीं अंडरकिन आरा इकोलोजिक वालों ने मानना नहीं अंडरकिन आरा इकोनॉमिक फारु जानुए मानो फेरुवना जान जो कहते ने दे चारे आरुवना फुट निजू फा आताकुज़ या जाऊँ रो जाई लांजा इकोनॉमिक जाई आफाना मापनरुस न्यूल्ला मंदित ना फालंजा फापुआरी आफाना यंचुमा मेचर का फावे निफिशी ना फालंजा फापुआरी देख फानेरेना न्यूल्ला यारु फा फानापीना न्यूल आमनी फिल्टेना न्या अंदावनांफ

0: गिलास तुम कुफाफ ही।
1: अंदेवनी मालागासराय नु मालागासरीन संगी संगी रिफ़ाम बाम तीन ब्रेरेरी केफ़कस कस चिम तीन सुन तीन मालागास दिलन दूसी दिलन एंगान फिज़ में ना कावे उन तुकाचान सिमिस रेम तीन मालागास इन सुन बुज़ाना किन्याफ़ अचाने नत फ़ून रसेंड जेपा मांगन तेन मालागास इज़मेन का रो मांगासियास चाइन निमा माल रो मालागासियावन बुफात चिन्याफ लेला सिन्वावन राम तेन जास जेम्रिसकम रसनिमीच उल नाम्बान तेन निवाइन नोतोन लाजन फमा मेनताई जात तेन लाजन Zem zava misy iaina tsika taona. Inona ny tohiny? Ahoana sy ahoana? Hoy iha mamaly rehefa atso azy. De honohono sisa ny teny malagasy. Ny andro avy angamba aoka ho teneniny. Tsy ho lazaina tsotra tsy afeny teniny. Ny gasy de andoha ny azy zay tsy levony. Ny vahiny andia. Tumbo ni andevni.
0: Shota tumbo kula, shota tumbo kufafu.